0: जी
1: हाँ, ही आउट एट सीएमएच ऑन डॉग बाइट.
0: Tensler. 1078, I'll be heading eastbound towards Dolan.
1: 10-4.